एक सहकारी प्रेमी तख्त पोछते बैठे, हाथ च माला फड़ी रह राज दा पाठ पिया करदा। इसका लड़का बाहरों भटकदा भटकदा आया, अपने पिता नूं पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गया। पिता ने पाठ किया, पुत्र ने सुनिया, अरदास की, पुत्र ने वह भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे से मैनू सुन के बड़ा आनंद आया, पर ए किस दी कलाम तुसी पढ़दे सी? इस तरह लगदा है जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुने। वैष्णव साधुआं दे को

गुरु दा जा सरवण कर दे ए सारे लोग आनंदपुर साहब नु तुरे जा रहे ने। ए सहजधारी लड़का मन विच सोचता जांदा है मना जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है उस गुरु दे ते दर्शन कीते आ मन नु ठंड पै जाएगी। गुरु साहब ते चौंकड़ा मार के बैठे होणगे उन्हां दीआं अखां बंद होणगीआं गुरु साहब दी समाधि लगी होवेगी। मैं जाके बुलावांगा तां वी उन्हां दी समाधि नहीं खुलनी उन्हां दा दरबार बड़ा वड्डा होवेगा बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी सोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे बड़ी संगत बैठी होवेगी बड़ी सोभा होवेगी क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे और उसे तरह ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे सोचदा संगत दे नाल तुरिया।

सूरज डूबरे है ए सारा संग आनंदपुर साहब किले दे बाहर पहुंचे है। दूसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेड़ के आए सन। नाल सिखा ने किन्ने ही मग मार मार के उन्हां दीआं लत्तां फड़ियां ने ते धौणा लटकियां ने। ओ मग हत्थां विच फड़े होए ने। संगत ने गुरु साहब नूं देखिया, गुरु साहब ने संगत नूं, गुरु साहब जी भी खड़े हो गए, संगत भी किले दे बाहर ही खड़ी हो गई। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पर ए जिहड़ा सहजधारी प्रेमी सी एदे मन विच गुरु साहिबां वास्ते किरणा पैदा हो गई। ए तां सोच के आया सी कि गुरु दी समाधि लगी होवेगी, गुरु साहिब चौंकड़ी मार के बैठे होणगे, पर जदू देखिया कि गुरु साहिब जी तां शिकार खेड़ के आए ने, नाल सिखां ने मरे होए मग फड़े ने हत्थां दे विच, ता इहदा मन किरणा दे नाल भर गया।

जिन हित आए जिदे कोल मैं चल के उजैन तू पहुंचिया वा इन्नी दूरों आया पर गुरु का

सारी संगत वाल देखे है। सारी संगत वाल देखण तो बाद ए जड़ा लड़का सी सहजधारी इस उत्ते निगाह टिका दिती। इसने भी देखे है कि गुरु साहब जी मेरे वाल देख रहे।

झाड़ू फेरिया लंगर विच भांडे मांजे गुरु दिया कथा कहानिया सिखा कुल सुनिया मन भिज गया। एक दिन कलगीधर पातशाह इकले बैठे सन। एक सहजधारी लड़का गुरु साहबां दे कोल गया। 100 रुपया पिता वाला 500 रुपया अपने कोलों गुरु साहबां दे चरणां ते रख के मथा टेकिया। नाले किया पातशाह ए हथां दी मैल है इस नूं सफली करो कुछ बख्शिश करो छुट्टियां देओ ताके वापस घर जावां। गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए कड़ा प्रसाद दिता आख्या ए साडे वल्लों अपने पिता नूं देई एक सर्वलोह दा कड़ा ते एक अपना वचन दिता सिखा इस कड़े दा अदब रखी जो मंगेगा वो तेनू मिलेगा। ए बख्शिशा लै के खुशी खुशी आनंदपुर साहब तू तुर पिया। बड़ा प्रसन्न है बड़ा खुश है पर जदों आनंदपुर साहब तू बाहर निकलिया ते सारा आनंद गुआच गया। माया वाली बिरती फिर जाग पई कह लगा मना बहुत माड़ा कीता 600 रुपया रोड़ के आ गई एकड़ा प्रसाद दिता है जिड़ा पिता घर रोज बनांदा ए सर्वलोह दा कड़ा दिता नाले वचन दिता कहंदे ने जो मंगेगा तेनू मिलेगा पर जिस कड़े दी अपनी कीमत 4 आने नहीं इन्हें मैनू 1000 रुपए कित्थों दे देने। बड़ा उदास हो गया मुंह लटकाए ते तुरदा तुरदा चमकौर साहब

बाजार विचों लंघ रहे है पर बड़ा उदास। एक गुरु का सिख ध्यान सिंह माजरी है बाजार विच खलोता सी। इसनु बाहों फड़ के घर लै गए है जल पानी नाल सेवा की थी। ध्यान सिंह कहन लगा भाई लगदा आया गुरु की नगरी तो पर उदास बड़े। गुरु दे घरों जिहड़ा भी आंदा है उहदा चेहरा खिड़िया हुंदा है पर तू उदास है की गल। कहन लगा सिखा की दसा उजैन तू गया तीन महीने सेवा की थी 600 रुपया रख के गुरु नु मथा टेकिया टेके आ कुछ बख्शिश करो एकड़ा दिता है जेड़ा मेरा पिता घर रोज बना दो। एक लोहे का कड़ा ते बचन दिता है कहंदे सी जो मंगेगा मिलेगा पर सिखा तू दस जिस कड़े की कीमत अपनी चार आने नहीं उन्हें मैनू की देना। ये गल सुन के ध्यान सिंह उथू उठे घरवाली को आ गए। ध्यान सिंह घरवाली नू कहन लगा भलीए लोके एक मूर्ख सिख आया उन्हू की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है। जे तू मेरे नाल सहमत होवे माया दा लालची 600 ते 5 रुपये वध दे के गुरु दा वचन ते कड़ा असी उहदे कोल लै ली। घरवाली ने कहा स्वामी जी बाजार जाइए एक रुपए दी एक मण कणक आंदी उस कणक नू घर लिया के साफ करन लगे हां एक दाणा चुकीए दूसरे पासे रखिए ते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु फिर एक दाणा चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मण कणक विच जिन्ने दाणे ने सारिया ते वाहिगुरु वाहिगुरु कह के वह कणक साफ करिए उस कणक नू फिर बाजार लै जाइए वेचण वास्ते ता बाणिए ने उहदा मुल एक रुपया ही पाणा। पर जे वह कणक जिदे ते सिमरन करके साफ कीती गई है वह कणक गुरु घर लै जाइए ते गुरु नानक तुठ के अपने सेवक नू अपनी जगह दे देंदा है इन्ना गुरु दयाल हो जांदा है। गहने ला दिते गहने वेच के इन्नू पैसे दियो इन्नू की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है। 605 रुपया जेब विच पा के ध्यान सिंह माजरिया फिर उस लड़के दे कोल आ

फिर आया पिता को, पिताजी मैनु गुरुकुल बख्शवा दियो। पिता इन्ना दी माता ते लड़का चमकौर सौ पहुंची, ध्यान सिंह नु नाल लैके के तू गुरुकुल सानु बख्शवा दे आनंदपुर साहब जा पहुंचे। तीन दिन सेवा कीती, चौथे दिन इस लड़के दा पिता गुरु साहिबां दे कोल पहुंचे है। बेनती कीती कि खिमा करो, मेरा लड़का भुल गया, उन्हें आप दा बचन वेचिया। साहब जी कहन लगे, बिशंबरदास घबरा ना, तेरा ते साडा बड़ा पुराना संबंध है। गुरु नानक साहब उज्जैन गए सन ता तुहाडे वड़के नानू ने कहा सी फिर कदू दर्शन दियोगे, ता गुरु नानक साहब ने कहा सी दसवें जामे विच मिलांगे। तो दसवें जामे विच असी आए हां, तुहाडा साडा मेल होना सी होया है, कल दीवान तो बाद आयो, जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। अगले दिन सारे जने इकट्ठे होए, साहब जी कहन लगे, ध्यान सिंह तू गुरु दा बचन ले, तेनू कुछ मिले है? ध्यान सिंह ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा, पातशाह जो मेनू मिले है मैं दस नहीं सकता। गुरु अर्जन साहब दा शब्द है, पढ़ के सुनाना, इन्ना कुछ मेनू मिल गया है। ता शब्द पढ़िया, गुरु के बचन मोहि परम गत पाई। ए शब्द आप सुन चुके हो कि गुरु दे बचन द्वारा की प्राप्त होंदा है। माया भी मिली, हलवान गया, मोरां दा भांडा लभा, जमीन भी लै ली, मकान भी बना ले, सब कुछ मिल गया। ते जदों इस लड़के हरगोपाल दास ने सुनिया कि गुरु दे बचन विच ता बहुत कुछ है, ता रोण लग पिया। ता गुरु साहब ने कहा, पाई रवो ना, घर जाओगे, घर जाके बस्तर छाद के पांच सिखां नूं घर बुला के प्रसाद छकायो, कड़ा प्रसादी देख तैयार करियो, आनंद साहब का पाठ करियो, जो मंगोगे उस वक्त अरदास विच उह तुहानूं प्राप्त होवेगा। गुरु की वड्याई करदे वापस उज्जैन पहुंचे, जो मंगया वो गुरु ने फिर बख्शिश कीता, सारे दुख दूर हो गए, सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गया। ते गुरु साहब जी का शब्द है, भाई गुरु का वचन की है, जो आपा गुरु की बाणी पढ़दे, गुरु के बचन नूं मन्नांगे, गुरु के बचन की कमाई करांगे, तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जाएगा। जे गुरु दे बचन दी सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नू गुरु दे हवाले करदा है, वो प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नू समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पहचान करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख

ए अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। ए पाए ए संसार अमृत दी बगीची है, अमृत दा बाग है, और इस बाग नू परमेश्वर बनाण वाला है। इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए, ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए

मैं सिमरन करके गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नूं जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारिआं विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जोत।

कभी भी देख लेना। जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे, ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश

सानो ज्ञान होवे। गुरु की है, गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदे। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमाते हैं।

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नो धरती से डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमाते हैं, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्होंने कुछ सेवा का चा है, बहुत घट होंगे सेवा वाले, बहुते थे अपने स्वार्थ वास्ते ये नारा लगाते हैं, असा सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंगी, सेवा ते मन होंगी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ये लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होगा, पानी विच रह के पानी दे विच रहन वाले जीवां नू खा के अपनी लालच वाली ए बिर

जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तैनूं गोते दे दे के मारांगा और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनूं श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गए और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया दोनों की मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं। राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे। गज पत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक परा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और उस समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी। ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिलिया और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे इहदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना की, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा। ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने जोर लाया, कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए का जोर चलिया ते हाथी

जो हम बोंधे मोह फास, जे असी कलयुगी जीव मोह माया दे जाल विच फसे होए हां, ते वाहिगुरु जिहड़ा तू सानू प्रेम लाया है अपने चरणा दा, सिमरन बख्शिया, उस सिमरन दे सदके असी तैनू ही तो बनिया होया, क्योंकि नाम ने किदा उधार नहीं किया। आकाश मंडल दे तारियां दी गिनती तो साइंसदाना ने कर ली है, पर जितने नाम ने तारे हैं उन्हां दी कोई गिनती नहीं कर सकता। करोड़ां दा उधार हो चुका है, हो रहा है, ते रहिंदी दुनिया तक नाम जपन वालियां दा उधार होंदा रहेगा। इसलिए हे भगवान, हम छूटे तुम आ

गुरु बाबा जी गलत नहीं कहते, जो उन्हां दी डायग्नोज है, जो उन्हां दा निचोड़ है, तत् है, वो ये है कि अंदरों मैं गलिया होया इंसान हाँ। ये अपने आप नूं रेखने आखना है, क्योंकि गुरु बाबा जी की नजर के सामने आंदियां सार वो साड़ी तस्वीर नूं जान जांदे हैं। वो आखदे हैं हर बिसलत तेरे गुण गलिया, तेरे सारे गुण गल गए हैं। और जो इंसान इस गल नूं अपने ते ला लेगा, उसनूं सब तो पहला फिक्र यह होएगी कि मैं गलिया पिया हां, मैं ठीक हो जावां, मैं ठीक हो जावां। और जदों इस काया दे गुण गल जाण, जो कि साडे सभना दे नाल होया है, फिर यह काया ना दुर्लभ रहिंदी है, ना यह मंदर रही, ना यह सरोवर रही, ना यह रब दी कामणी रही, औरत रही, गल गई। रब यही जही नूं थोड़ो अपनी कामणी बनांदा है, ना रब की कामणी रही, ना ही यह सानू अकाल पुरख तक पहुंचाने दे योग एक इंस्ट्रूमेंट रहा, वहीकल रहा, क्योंकि गल गया है। जदों फिर यह गल जाए, उदों इस दा जो दर्जा है, इस दा जो स्टेटस है, इसकी जो प्लेस है, थां है, इसनू फिर की आख्या जाता है, अज आप जी के सामने मैं वो रखन लगा, छह नुक्ते रखांगा। गुरु बाबा जी इस गले हुए जीवन नूं, गली हुई काया नूं की शब्द वरतदे हन, क्योंकि गली पई। नंबर एक सुनो, हुण ऐ सब कुछ साडे ते लागू हुंदा है। नंबर एक नुक्ता है, वह कहिंदे इस दे तिरकार है, लानत है, तिरकार है। हुण जो शख्स बहुत प्रेम नाल गुरु बाबे ते उत्ते बहुत श्रद्धा दे नाल पूर्ण विश्वास रख के सुनेगा, वो शर्मसार हो जाएगा, उस दियां अखां च अथरू भी आ जाएंगे, उसका दिल भी फुट फुट के रोएगा, उसनू अपने आप तो गिलानी आएगी, उसनू अपने आप तो लज्जा आएगी, शर्म आएगी कि गुरु बाबा जी आखते हैं कि तेरे गुण गल गए हैं, इस करके तेरे जीवन दे तिरकार है। नंबर एक नुक्ता कहते हैं, अते तेरा खाना उसदे भी तिरकार, तेरा पीना उसदे भी तिरकार, तेरा सोना पहनना सब कुछ, तेरे सब कुछ नू तिरकार है, क्योंकि तेरा तू अपने आप नू गाल लिया है, तू गलिया पिया, तू किसे कम दा नहीं।

जितने भी इसके छिद्र हैं, छेक हैं, होल्स हैं शरीर दे, उन्हां दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चों, अखियां चों, नासकां चों, मुंह चों की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नु प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सूची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउन नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहंदे ए ना पाक है, किथे मंदिर, किथे इसनु मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनु नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखदे हन ए डरौनी है, ए काया। कहंदे

अगर इसनों मंदिर नहीं बनाया तो जो इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इस दे नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़द्या डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखदे हन

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे, पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबिया लंबिया। कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सैटल पता नहीं कदों होणगे हो। तो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख है क्योंकि इसने अपनी गलत आदतां बना लिया हैं, एडिक्शंस बना लिया हैं, स्वभाव बना लिए हैं, अते उना चीजां नू वरतदी है जड़ियां चीजां इस नू कमजोर कर दिया हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है।

जितने रस शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनिया, अगर इसनु दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ए दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच ते बहुत ही चोट वाली गल करदे हन, कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे विच

सगल शरीर आवत समकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनन दे योग हुंदी है, असीं पहन लैने हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नूं उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसे ना किसे काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जरा किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर वह नहीं किया तो कहते निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इसके सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनों रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इसके नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। ऐ जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकतानी है, त्रिकारतानी है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नूं ऐसे तो नहीं पहुंचा बैठा हां, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नूं इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

मुक्ति मंग कल्याण मंग ता उस वेले पिता श्री मेहता कालू सन्यासी दे रूप विच देव मूर्ति नु कहंदे जे मैं मुक्त होवां कला मुक्त होवांगा कल्याण मंगा मुक्ति मंगा ता कला मुक्ति नु प्राप्त होवांगा पर मैं चाहना ओ परमात्मा ओ हरि मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लोवे जिस तरह कोई मूर्ति दी पूजा करता है इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा ओदी सेवा करा मैं भी ओदे दर्शन करा ओदे दर्शन करके जिथे मैं मुक्ति नु

इस सन्यासी पिता मेहता का लून ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर त्वाड़े कार ओ नारायण आप प्रगट होवेगा। पर जदू तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता मेहता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक एहो जिहा सुपना है, ए ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति। पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन ऐ मना कि ए नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ए पारी तप कीते उस तप दा फल मेरी अरदास दा फल जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया। उठ के खड़े होए, अपने आप नू कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मेहता कालू जी उठे, तन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते हैं तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्तां लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत

हाथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब लम्या पै के डंडौत करते हैं ते नाले कहते ने ऐ दाता तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सके कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा है ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

तेन पहचान ना सके। और एक वरी ऐ दाता वीर पैया दे बदले मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी,

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दिया बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है।

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की परवाह नहीं करते, इस सिखिया उन्होंने वास्ते कि देखो वो गुरु नानक साहब जिन्हां नूं दुनिया नमस्कारा करती है वो धन गुरु नानक साहब अपने पिता नूं मत्था टेकदे ने ते सानूं उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर वो मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नूं जन्म देंदे ने, औलाद माता पिता नूं जन्म नहीं दे सकती, ये मापिया का वड्डा गुण।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे हां एक मां बाप अठ धीआं पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धीआं पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वह फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धीआं पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

और माता पिता ये जरूर कहना चाहवांगे कि जब बच्चे छोटे होंगे जिथे उन्होंने चंगा खाना देंगे चंगा कपड़ा देने की कोशिश करते हो चंगी तो चंगी विद्या

प्यारा लिखा है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़ी है बाहें जनादी पकड़ी है सिर दी जय बाहें ना छोटी है असी जकारा बुलावांगे सारे ने उच्ची वांग करनी है सच्चे पातशाह साडी वांग।

0: नीच कुलह।
1: कबीर जी जात दे जुलाए सन, हजूर बाणी विच बख्शिश करदे हन के जदों नाम दी कमाई कीती तां गुणा दे खजाने बन गए।

भाई शबनंद लाल जी ने जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन का जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां गुरु चरणां विच जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहियां हन। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया झट बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सतसंगत दियां दरीजां टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नूं भेज के इस प्रेमी नूं बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सैं बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है? ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुरसिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नूं भी थां है। मैं तां बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है? गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हन। हजूर ने इस प्रेमी नूं अपने गल नाल ला के आख्या कि जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है वो कलाल नहीं रहिंदा।

को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा की लिख रहे सन ते फिर आपने लिखिया कि कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई हरी दी वड्याई हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया।

0: राम राजे।
1: गुरु अंगद देव महाराज हुन गुरु नानक दी महिमा सुनी खिच पई मन दे विच, जिन्हां दे नाल कोई रिश्ता जुड़ना हुंदा भाई, कोई कारण बन जाता है, अच्छे अच्छे लगन लग जाते हैं, वो चंगे चंगे लगन लग जाते हैं। सो सात संगत, जिस रब दे प्यारे नाल साडा संबंध होएगा, सानू दुनिया सारी दुनिया दे विचों चंगा लगेगा। बोलो
0: सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: सो सात संगत, हुण गुरु अंगद देव महाराज जी कहिंदे हन, भाई तुसीं इत्थे बैठो,

0: जिन हर पाया तिना छपाया, छिपे रहन की चाहत छिप टुर जान दी, पर यह पूरी हुंदी ना मैं ताले लै रहा। सात संगत खुशबू फुल दा पता दे दिंदी है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: खुशबू किसे फुल किसे नूं नहीं कहिंदा है, ना फुल किसे नूं दसन जांदा है, ना फुल किसे नूं सददा है। फुल दी खुशबू ते सात संगत राही नूं सात संगत खुशबू तो उसका पता लगता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: हुण जी खुदाए दा भेद ना किसा दे, हुण मन दे विच बड़ी शर्मिंदगी आई भाई लैण दे कि मैं घोड़ी ते चढ़िया आया ते गुरु जी ने अपना आपा तक नहीं जनाया, ये तुरे आए, ये तो कितनी बेअदबी है। अंतरजमी सतगुरु जी कहते हैं भाई पुरशा, बेनती भी करते हैं महाराज मेथों किड्डी बेअदबी होई, मेथों किड्डी बेअदबी होई, तेरा नां की है जी लैणा। गुरु जी कहते कोई नहीं, लैण वाले घोड़िया ते चढ़ के आया करते। रमज दत्ती लैण वाले वो राज नहीं देंदे, रमज देंदे ने, लैण वाले घोड़िया ते चढ़ के आया करते ने। इस करके तू मन दे विच कोई चिंता ना कर, त्याग दे इस मन दे फुरने नू। साध संगत हुण दर्शन करके ऐसा मन जिमें मच्छी पानी दे विच लीन हो जाती है, गुरु दे दर्शनां दे विच ही लीन हो गए, बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूजे पासे लभदे लभदे साथी आए, बई जाना है इत्थे ही बैठ गए। कहिंदे हां बस जिथे जाना सी चले गए, जिथे पहुंचना सी पहुंच गए, बोलो।

0: जो सुख चाहे सदा शान राम की
1: लेह
0: सो सा संगत। इस करके हूं परथ ते कृपा हुई, हूं महाराज उस परथरी नू शाहूकार नू किमें सुखी हो, दुनिया किमें सुखी कीती गुरु नानक ने बोलो सपना
1: श्री वाहिगुरु।
0: परथरी कहना 500 साल दी मेरी उम्र है, इतने जप तप इतने जो कमाले मेरा मन अजे भी शांत नहीं होया है। शाहूकार कहने इतना कुछ हो के भी मेरा मन शांत नहीं होया है। सतगुरु ने कृपा की थी,